परमात्मा मेरा प्यार तेरे नाल होंदा नहीं, हे मेरे सच्चे गुरु मेरा प्यार होंदा।

तीरांत न पारा वर्या राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम पारा सब त्यावै है सब त्यावै तुझी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दाता हर त्याव।

गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भवजल तन कै।

चुन चुन सत्र हमारी मारिय है, आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हूँ जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जू करियो रक्षा। राख ले हो मोह रखन हारे, साहिब संत सा

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब युद्ध करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देही अपारा। जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देही तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धारै।

ताको कृपा हनि अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है देती वर्णत भिन्न भिन्न तो हि तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा।

कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रनकाता। जे अस्तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो, ताकि ताप तनक मैं हर हो। रिद्ध सिद्ध कर मोसम होई, दुष्ट शाह श्व सकै न कोई। एक बार

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता। किन भिख सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जब पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़िल। सुनै गुंग जो जाहे सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट, न तिन नर के रह, हो जो जाकी।

सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री स्पान कृपा तुमरी कर।

राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दोता गाव हो हरि केरा मन जनी वसाया।

सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहै नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं कर तेरै साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मनाए वसिया जिनी इच्छा सब पुजाईया।

विकार संसे मह तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पियावै हुरस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर न होए गु फेरा अंतर जामी पुरख बिदाते सरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मुख कर संत।

कहु नानक सब तेरी वडियाई कोई ना न जाने। बोलना जी वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण जी त्याई है जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै करना उन्हें दया बताए सब थाई होना जी सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होना जी सहाय। दसा पातशाहियाँ की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। हे निमाण्या दे मान निताण्या दे तान ने उठन दी ओट सच्चे पिता धन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी आप जी ने अपार कृपा बख्शिश मेहरामत की अमृत वेले तो खुले दर्शन दीदारे बख्श के निहाल निहाल निहाल किया। इस वेले संध्या दे दीवाना दे समाप्ति उपरंत आप जी दे पावन पवित्र स्वरूपां दी टहल सेवा हुई है। नाल नाल सोहिला साहब जी की बाणी दे जाप होए। सतगुरु जी समुची बाणी पढ़दे आ टहल सेवा करदे आ। बेअंत तरह दियां भुलां गलतियां हो गईआं जाण बच्चे जाण के मुआफ़ करना अगां तो शुद्ध स्पष्ट बाणी पढ़न सेवा करन दी बलबुद्ध समर्था बख्शनी सतगुरु जी। इस वेले आप जी दे चरणा कमला पास अरदास बेनती जोदड़ी है। आप जी कृपा करो अपने निज स्थानां वल जाण दी कृपालता करो। संगतां नूं छुट्टियां बख्शो अमृत वेले फिर दर्शन दीदारे बख्श के निहाल निहाल निहाल करना। अखर वादा घाटा भुल चुक मुआफ़ करनी सरबदे कारज रास करने सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिता वे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले

रैयत राजे दुरमत दोई, बिन सतगुर सेवे एक न होई। एक त्याय न सदा सुख पाए, न निश्चल राज तनाहा।

सच संजम सतगुरु दवारा हमै क्रोध शब्द नवारा सतगुर सेव सदा सुख पाइया शील संतोख सब तहा है।

गिसंतर भवायंतरणी पाले माया मोहे बदा जम काले जम की फांसी कब हुना तूटे तुझे पाए परमाए राव जब तब संजम होर कोई नाही जब लग गुर का शब्द ना कुमाही गुर के शब्द मिले।

अग्मी अगोचर लख अपारा कोई न जाने तेरा परवारा अपना आप पछाण है आपे गुरमती आप बुझाएगा।

गुरमुख बिरलै जाने। ये पंक्ति जिस सारे शब्द का केंद्री भाव है, भगत जी दसते हैं कि जो मनुख अपने आप को गुरु के हवाले करके नाम सिमरता है, प्रभु वाली प्रभु मिलाप

कोई न सुझाई जे तिस गुण कोय करे। सुने दीप लोपा ताल सुने पोहि न सकै काल। सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद सुने मुखसाला हनुमंद। नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास। सुने पड़ पड़ पावे मान सुने लागे सहज ध्यान। सुने सरा गुणा की गाह सुने सेख पीर पातशाह। नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास। कागद कलम न लिखन हार मन्ने का बह करन विचार। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध मन्ने सगल भवन की सुध। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए। मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म से तीसन बंध।

अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे कलंकन बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो।

नमो मंत्र नमो जंत्र जंत्र सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासि सदा सिद्धा बुद्धा बृद कर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच

रूपनाथ मूर्त जोन पुरख पार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपुन काल नाम थाम न जात जक रूप रंग न रेख देशो न पेश जक रूप रेख न राग नाम काम पहीन पेकद ताम हुन जाहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक देव पेव न जाने जब बेद और कतेब तात्मात्मा जात जाकर जन्म मरण बहीन लोक चौद के बिके जग जाप ही जय जाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख पार कालहीन कला सुचुकत काल पुरख देश अंगराग न रंग जाके जात पात न नाम आप रूप मीक नुस्त एक पुरख अवदूत अंगहीन पंगना तुम एक पुरख पार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख परम वेद पुराण जाके नेत पाखत नित मधुबार जन त्व प्रसाद गुण गनुदार महिमा पार।

0: पंगु मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम आलस्य कर्म दृश्य धर्म चातरी संत प्रसाद गोविंद मुकंदे उदारे अपारे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्रवर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पास चतर चक्र वस चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्रा न चित्रा न मित्र परे है पवित्र
1: राजन प्रभा है कि तर्मन जगतन कृति है कि छत्र हाथ अदेव है कि आप रोजी रजा के रही मेरे अफुल गुना है कि साहन राजक रहीम है कि कर्मन करीम है सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे
2: सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे
1: सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने
2: सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
1: सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे
2: सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले
1: सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
2: सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
1: सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे
2: सर्वत्र छोखे के सर्वत्र कोखे
1: सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे
2: सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे
1: सर्वत्र माने सदैव प्रदान
2: सर्वत्र जापे के सर्वत्र थापिए
1: सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने
2: सर्वत्र इंद्रे के सर्वत्र चंद्रे
1: सर्वन कलीम है के परमन फही
2: कलामे के साहेब कलामे
1: हुस्नुल वजू है तमाम रुजवा
2: में हमेशा सलामे सली कुतबदा में
1: गली मुसिकस्ते गरीब परस्त तरंग है अपेद है
2: अपंग
1: स्वरूप है त्रिमुकुट विभूत
2: प्रभा।

0: त्रिपाद अरूपे अनाद स्वरूपे
1: अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे
0: त्रिपंकन त्रिपादे अगंजे अगादे
1: सुभं सर्पादे सुसर्पा अनुरागे
0: गुप्त स्वरूपे अचिंचय अछूते
1: ते नर्तन प्रणास है प्रचुल प्रवास है
0: रुगत प्रभा है सदैव सदा है
1: विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
0: रुगत सदा है विभुगत प्रभा
1: अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
0: चाचरी छंद अपांग है अनंग

0: प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगान
1: मोदन
0: प्रणाम मुन मन
1: अल्पनाश
0: मुन मन
1: प्रणाम
0: चित चरणाद प्रसाद करनाले है
1: है
0: मंड सकल खंड
2: सर्वे पर है।

0: श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवीं कबियो पाश बेनती चौपी हमरी करो हातिर चा पूरन हुई जित की इच्छा।
1: तत चरण मन रहे हमारा अपना जान करो कृपा पारा। सुखी बचे मोरो परिवार आ से बचे छवे करता रहा।
0: सब बेन को आज मिलिए।

0: खतरा सुन रही है।
1: पूजो सदा हमारे पछा श्री अतु जो करियो रक्षा। दिन बंधु चढ़ के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए कर विष्णु प्रकाश सा सकल काल का किया तमाशा। यमन काल सब लोक सभा नमस्कार हता है हमारा। आदंते के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। चेतन को सब गुण सुख दियो सतरंग को परमो बस कियो। चीटी ते को चर रसुल्ला सत पर कृपा दिशकर भूला। एक एकी पीर पुछाने कट कट के पट पट की जाने। जाबा कर कर

अंडा दे रसे तेज के नी उत्पय खान बहुत दिनी सगरी शी दिखा है चंबव आत गाच रूप चंबव दूर जेते उठ वत माता सकल मलेश करो रण काता उर्ख जनपद परे तिहारे दिन के तुम संकर सब चारे रचा हुए ताए सब काला दुष्ट रिश्तरे तत्काला ये दशद कर्म सब होई दूर साफ सह सके ना कोई।

0: गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समानी
1: कहे नानक चाल भक्ता जुगो जुग निराली
0: जो तू चलाया है ते चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे
1: जिस तू चलाया है ते वह चले जिना मार्ग पावे
0: कर कृपा जिन नाम लाए है से हर हर सदा त्यावे
1: जिसनु कथा सुनाई अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे
0: यह नानक सच्चे साहे जो पावे ते वे चलावे
1: यो सुएला सब सुहावा सब सुहावा सदा सोएला सतगुरु सुनाया
0: एहो तिनकै मन वसिया।

0: पवित्र माता पिता कुटुंब से पवित्र संगत सबाया कहे नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर हर त्याया
1: न जाय
0: सहसा कते संयम रहे कर्म

0: जग में मुख ते हारे चित में जोध विचारे।
1: दया नितना नित रहे जस नाव चढ़े पव सागर तारे। बुद्ध सिंह दीपक जी।

गुरुदेव सखा ज्ञान पंजन गुरुदेव मंद सहोदरा गुरुदेव सां सद बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव कर्ता सब पाप हरता गुरुदेव।

रखे अपने को सास सास प्रतिपाले आदि अंत पर सदा सहाय तन हमारा मीत रहाओ हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रपूरण पैज रखा मान बिलास पे साहिब के अचरज देख बड़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई चौ गिरद हमारे राम कार दुख लगे ना पाई राम नाम ओख दिया एक हल लाई रहा

प्रभ पूरन पैज रखाई, सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसियाए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। ओ वैर सिफत खसामदी नूर अरसों कुलसों चटिया। तुद जिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सजन सच्चा पातशाह सिर साहांदे साहो। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन पया निदाना। गुरु ग्रंथ साहिब जी साडे पिता समान ने, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी ने सानू साडे पुरखियां दा खजाना साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भाई गुरुदास जी कोलों गुरमुखी अखरां विच लिखा के साडे ते परोपकार कीता। ते साडे गुरु साहिबाना ने गुरमुखी दा एक एक अखर सवार के शिंगार के साडी झोली विच पाया। बहुत सारे शहीदां ने खून डोलिया इस बोली नू होंद विच रखण वास्ते, पर अज असी गुरमुखी पंजाबी मां बोली तो दूर हुंदे जा रहे हां। साध संगत जी, असी तां पंजाबी दे प्यारियां दा सुनेहा आप जी पास पहुंचा रहे हां। बेनती करदे हां, जे आप जी घर परिवार विच बच्चियां नाल पंजाबी विच गल बात करदे हो तां आप तंता दे जोग हो। जे कुछ कमी है तां अज ही इस पासे ध्यान दिओ। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही होता है। अजकल दे स्कूलां दोस्तां मित्रां विच उनां नूं इह समा नहीं मिलदा। जरा सोचिए, जे बच्चे पंजाबी मां बोली नूं नहीं समझणगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना एक पासे रहा, वह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त करनगे? गुरु नानक साहिब ते गुरु गोविंद सिंह जी नाल किवें संबंध जोड़नगे? आप जी वध तो वध जिन्नियां भी जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर साध संगत जी पंजाबी मां बोली सिखी दा मुढ है, सिखी दा तुरा है, मां नूं ना भुलिए। कहंदे ने ना, जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उस कोलों उस दी मां बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैर ते आप ही खुआड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक साहिब जी ने अवतार तारिया मुगल राज दा समां सी, हिंदुस्तान दी जनता कमजोर ते नडाल हो चुकी सी। इस घातक वातावरण नूं देखदिआं बाबा नानक जी ने बचन उचारिया सी, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। इह हिंदुस्तान दी जनता नूं हलूणा सी कि क्यों घर घर विच मियां बने बैठे हो, क्यों अपनी बोली त्याग दित्ती है। महापुरश बाबा नंद सिंह जी दे बचन पढ़ी देने, कोई मेरिया अखां नाल तके गुरु ग्रंथ साहिब जी दा एक एक अखर गुरु नानक है। जे गुरमुखी आउंदी नहीं, जे पंजाबी आंदी नहीं, ते किवें गुरु नानक दे दीदार होणगे? साडा सभ्याचारक मां बोली तो बगैर अधूरा है। साडे ब्याह शादियां खाना पीना बैठना उठना जे मां बोली नहीं ते सब कुछ अधूरा है। साडी मां बोली गुरमुखी पंजाबी जो 35 अखरी गुरु अंगद देव महाराज जी ने साडी चोली विच पाई, अज साडा हाल देख के सानू ताना मार रही है। मुठ्ठां मीट के नुकरे रहां बैठी, टुट्टी होई रवाब रबाबियां दी, पुछी सार ना जिन्हां ने सरफ मेरी, बे मैं बोली आ उन्हां पंजाबियां दी। जिवें रवाब टुट जावे ते रबाबी उसनू एक नुकरे खलार दिंदे ने, मैं इन्हां दी मां बोली हाँ, इन्हां दा सवाद देख के थक टुट गई हाँ, इन्हां ने मैनू नुकरे खलार दिता है, ये मेरी सार नहीं लेंदे। मैं इन्हां दे गुरुआं पीरां दी सत्कारी हुई हाँ, पर अज पछमी सभ्यता देख के मेरी गोद विचों उठदे जा रहे ने। भाई गुरदास जी कहंदे ने ना, मां दे नां प्यार तुल, चाचियां ताइयां
किन्ना भी प्यार देन, मां दी गोद दा निग कोई होर नहीं दे सकता। असी किसे भी बोली नू माड़ा नहीं कहंदे। अंग्रेजा नू अंग्रेजी मुबारक है, ये उना दी मातृ भाषा मां बोली है। जिस दी भी कोई मां बोली है उनू ओदी ओ बोली मुबारक है। पर असी इस ते माण करिए, साड़ी मां बोली गुरमुखी पंजाबी है। गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, सजना मित्रां नूं इह सुनेहा जरूर सुना दिओ। पंजाबी बोलो, पंजाबी पढ़ो, पंजाबी सुनो। अगे गुरु नानक साहब दा अपना काम है, वो आपे ही सहाई होणगे।

0: का सचे न समाया। सब आपे आप वरता करता जो पावा सो न लाया। जन नानक नाव लय ता जीवा बिन नावै खिन मर जाया। मन अंतर होमै रोग भरम पुल होमै सागत दुर्जना। नानक रोग गवाई मिल सतगुर साधु सज्जन। गुरमति हर हर बोली हर प्रेम कसाई दिनस रात। हर रति हर रंग चोली हर जैसा पुरख न लभई। सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुर नाम दड़ाया। मन अनंत न कहूँ डोली जन नानक हर का दास है। गुर सतगुर के गुल गोली सलोक महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रते से जे मुख ना मुड़न जिनी संयाता साई। चढ़ चढ़ पौंदे कच्चे बिरही जिन्ना कारण आए। तनी बहूना पाठ पटंबर पाही सेती जाले। धूड़ी बिच लडंदड़ी सोहा नानक तस नाली। गुर का शब्द अरादिया नाम रंग बैराग। जीते पंच बैराइया नानक सफल मारू एह राग। जाम एक तां लख तो जीते पिंदड़ै दर कितड़े। बामण बिरथा गयो जनम जिन की तो सो विसरे। सोरठ सोरस पीजिए कबु न फीका होए।
1: नानक राम नाम गुण गाइए है दरगह निर्मल सोए। जो प्रभ रखे आप तिन कोई न मारई। अंदर नाम निदान सदा गुण सारई। एकाटेक अगम मान तन प्रभ तारई। लगा रंग अपार को ना उतारई। गुरमुख हर गुण गाए सहज सुख सारई। नानक नाम निदान हृदय उरहारई। करे सुचंगा मान दुई गणत लाहे। अपनी नदर निहाल आपे लै हुलाए। जन देहु मति उपदेश विच हो परम जाए। जो तुर लिखिया लेख सोई सब कमाए। सब किश तिस दैवास दूजी नाहीं जाए। नानक सुख अनद पए प्रभ की मन रजाए। गुरपुरा जिन सिमरिया सही पए निहाल। नानक नाम आराधना कारज आवै रास। पापी कर्म कमावंदे करदे हाय हाय। नानक ज्यो मथन माधाणिया त्यों मथे त्रम राय। नाम ध्यान साजना जन्म पदार्थ जीत। नानक धर्म ऐसे चवह की तो पवन पुनीत। खुबड़ी कुथाए मिठी गलन कुमंत्रिया। नानक से उबरे जिन्ना भाग मथाहे। सुतड़े सुखी सवन जो रती सह अपने। प्रेम विशोहा तनी सौ अठे पहलवान। सुतड़े असंख माया झूठी कारणे। नानक सेजा गन जे रसना नाम उचारणे। मृग तृष्णा पेख भुलणे उठे नगर गंधरब। जिनी सच अराध्या नानक मन तन फब। पतित उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरख अपार। जिसै उधारे नानका सो सिमरे सिरजनहार। दूजी छोड़ कवाटड़ी एक सौचित लाए। दूजे भावी नानका वहन लुड़ंदड़ी जाए। ते हटड़े बाजार सौदा करन बन जा रहा। सच वखर जिनी लद्या से सचड़े पासार। पंथा प्रेम न जाणई भूली फिरै गवार। नानक हर विसराए कै पौंदे नरक अंधियार। माया मन हो न विसरै मांगै दमा दम। सो प्रभ चेतना वई नानक नहीं क्रम। तिचर मूल ना थुड़ी दो जिचर आप कृपाल। शब्द अखुट बाबा नानका खाहे खर्च धन माल। खंभ विकांदे जी लहा किन्ना सावी तोल। तन जड़ाई अपने लहा सो सज्जन टोल। सज्जन सच्चा पात साह सिर साहां दे साहो जिस पास।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद रागमाला राग एक संग प्रथम राग भैरव वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गावै बंगली पुण्य असलेखी की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिसाग सुनावे बंगाल मधमाधव गावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलापै है संग रागनी पंचो थापै है गोंड करी अरदेव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचो गाई मालरा कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा प्रबल चंड कौशक उबारा खौ खटो भौरानंद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठै तान कलोल गायन तार मिलावही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस हीरी रह पार जा संगलाई पांचों आर जा सुरमा नंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सोहाए सरस बान ओ आहे बिनोदा गावै सरस बसंत कुमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन्याई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औरामा कमल कुसम चंपक के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना साब मिल श्री राग वह गावह है पंचो संग बरंगन लावह है भैरारी करनाटी तरी गवरी गावह है आसावरी ते पाछै सिंधवी अलापी श्री राग स्यों पांचों थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खस्तम मेघ राग वह गावह है पांचों संग बरंगन लावह है सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावह है आसा गुनगुनी उच्चै सुरसु होपन कीनी मेघ राग स्यों पांचों चीनी बैरा धर गज धर केदारा जबली धर नट औ जल धारा

तौ उतरी सगल दुराशय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देव गंधारी पंजवा दर्शन नाम को मन अच्छा, भ्रम आयो है सगल थान रे, आहे पर्यो संत पाछे रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख परिवार, बहुत ही सत्कारयोग बीबी जगजीत कौर जी तथा समूह परिवार, बेटा सोहेत वीर सिंह, बेटी नवलीन कौर परिवार वालों सतगुरु जी के अस्थाना ते श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ करवाए गए सन, संपूर्णता हुई है। सतगुरु जी कृपा करन, अपने दरों करों नाम दान इशनान बख्शिश करन जी, सतगुरु साहब जी मेहरामत करन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।